मैं यहाँ पे चला गया इन मॉर्निंग बनी काफी में डालें डालें जिंदगी जगह लोगे लोगे ना मैं सिर्फ